0: हिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति ज्योति।
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम भजन सुमिरन। प्रत्येक शनिश्चरबार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। अध्यात्म ज्योति को यो प्रस्तुति का प्रायोजक शुद्धता को सुनौलो परंपरा जय माता दी गोल पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड। प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश शुभेच्छा र प्रेरक प्रसङ्गका साथमा कार्यक्रम शुभ प्रभात सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जली प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजनका साथ

कार्यक्रम भजन दीपांजलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ न 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा।

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो
1: भजन सुमिरन सुमिरन अध्यात्म ज्योति को यो प्रस्तुति का प्रायोजक शुद्धता को सुनौलो परंपरा जय माता दी गोल पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड न्यू रोड।

गरीबी से बुरा हाल अपनी पत्नी के समझाने के बाद सुदामा द्वारकाधीश के महल के पास जब पहुंचे तो वो महल के अंदर जाने का प्रयास करने लगे। द्वारपालों ने उन्हें रोका तो उन्होंने कहा, अरे द्वारपालों,

सुबह जब उनकी आंख खुली तो ऐसी खुली जैसी सबकी खुलनी चाहिए। सुबह जब आंख खुली तो पहली दफा खुली, सदियों सदियों से बंद थी वो आंख खुली। सुबह जब आंख खुली तो भोर का आखिरी तारा डूबता था, उस भोर के आखिरी तारे को उन्होंने डूबते हुए देखा। इधर बाहर भोर का आखिरी तारा डूब गया, उधर भीतर भी मन की आखिरी रेखा विसर्जित हो गई। कुछ भी ना था, भीतर कोई भी ना बचा, सन्नाटा था, शून्य था, विराट शून्य था, आकाश था। कहते हैं बुद्ध 7 दिन वैसे ही बैठे रहे, मूर्तिवत, हिले नहीं, डुले नहीं। कहते हैं देवता घबरा गए, आकाश से देवता उतरे, ब्रह्मा उतरे, चरणों में पड़े और कहा आप कुछ बोले। ऐसी घटना सदियों में घटती, बड़ी मुश्किल से घटती, आप कुछ कहें। हम आतुर हैं सुनने को कि क्या हुआ है। हिंदू बहुत नाराज है इस बात से कि बौद्ध कथाओं में ब्रह्मा को उतार के और बुद्ध के चरणों में गिरा दिया, लेकिन कथा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देवता भला स्वर्ग में हो आकांक्षा के बाहर थोड़ी। आज एक घटना घटी है कि एक व्यक्ति आकांक्षा के बाहर चला गया, तो बुद्ध के ऊपर कोई भी नहीं, बुद्धत्व आखिरी बात है, देवता भी नीचे हैं, अभी उनकी भी स्वर्ग की भोग की आकांक्षा है। इसलिए तो कथाएं हैं कि इंद्र का आसन डोलने लगता जब भी लगता है कोई प्रतियोगी आ रहा, कोई ऋषि मुनि तपस्या में गहरा उतर रहा, इंद्र घबराता, आसन कपने लगता। ये तो आसन इंद्र का क्या हुआ, दिल्ली का हुआ। इंद्र का कहो कि इंदिरा का कहो, एक ही बात, इसमें कुछ बहुत फर्क ना हुआ। ये तो कोई आने लगा तो प्रतिस्पर्धा, घबराहट, बेचैनी। बुद्ध ना कुछ करके उपलब्ध हुए। जो बुद्ध के जीवन में घटा वही अष्टावक्र के जीवन में घटा होगा। कोई कथा हमारे पास नहीं, किसी ने लिखी नहीं, लेकिन निश्चित घटा होगा, क्योंकि अष्टावक्र जो कह रहे हैं वो इतना ही कह रहे हैं कि तुम दौड़ चुके खूब, अब रुको। दौड़ के नहीं मिलता परमात्मा, रुक के मिलता है। खोज चुके खूब, अब खोज छोड़ो। खोज के नहीं मिलता सत्य, क्योंकि सत्य खोजी में छिपा है, खोजने वाले में छिपा है। कहां भागते फिरते हो, कस्तूरी कुंडल बसे। लेकिन जब कस्तूरी का नाफा फूटता है तो मृग पागल हो जाता है, कस्तूरी मृग पागल हो जाता, भागता है, इधर भागता उधर भागता, खोजता है कहां से आती ये गंध, कौन खींचे ले आता है सुवास को, कहां से आती, क्योंकि उसने जब भी गंध आती देखी तो कहीं बाहर से आती देखी। कभी फूल की गंध थी, कभी कोई और गंध थी, लेकिन सदा बाहर से आती थी। आज जब गंध भीतर से आ रही तब भी वो सोचता है बाहर से ही आती होगी, भागता है, और कस्तूरी उसकी ही कुंडल में बसी है। कस्तूरी कुंडल बसे, परमात्मा तुम्हारे भीतर बसा है। तुम जब तक बाहर खोजते रहोगे योग में भोग में व्यर्थ। साधारण योगी भोग के बाहर ले जाता है, अष्टावक्र योग और भोग दोनों के बाहर ले जाते हैं, योगातीत भोगातीत। इसलिए तुम पाओगे सांसारिक का अहंकार होता है। तुमने योगी का अहंकार देखा या नहीं? सांसारिक का क्रोध होता है, तुमने दुर्वासाओं का क्रोध देखा या नहीं? सांसारिक आदमी दंभ से अकड़ के चलता है, पताकाएं लेके चलता है, तुमने योगियों की पताकाएं हाथी घोड़े देखे या नहीं? साधारण आदमी घोषणा करता है इतना धन है मेरे पास, इतना पद है मेरे पास, तुमने योगियों को देखा घोषणा करते कि नहीं कि इतनी सिद्धि है इतनी रिद्धि है? लेकिन ये सारी बातें वही की वही है, कोई फर्क नहीं हुआ। जब तक योग योगातीत ना हो जाए, जब तक व्यक्ति मैं करता हूं इस भाव से समग्रता या मुक्त ना हो जाए, तब तक कुछ भी नहीं हुआ। तब तक तुमने सिर्फ रंग बदले, तब तक तुम गिरगिट हो,
जैसा देखा वैसा रंग बदल लिया, लेकिन तुम नहीं बदले, रंग ही बदला। सदा से खोजियों का यह अवलोकन रहा है कि परमात्मा उपलब्धि अत्यंत दुसाध्य घटना है। ये बात एक अर्थ में सच है। अगर तुम बहुत दौड़ के आना चाहते तो कोई क्या करे, अगर तुम अपने कान को उल्टी तरफ से पकड़ना चाहते हो मजे से पकड़ो। निश्चित तुम जब उल्टी तरफ से कान को पकड़ोगे तो तुमको लगेगा कान को पकड़ना बहुत दुसाध्य घटना है। ये तुम्हारे कारण, ये कान के कारण नहीं। अब अगर तुम सिर के बल खड़े होकर चलने की कोशिश करो और 10-5 कदम चलना भी बहुत कठिन हो जाए और तुम कहो कि चलना बहुत दुसाध्य घटना है, तो तुम गलत भी नहीं कह रहे, तुम ठीक ही कह रहे, लेकिन सिर के बल तुम खड़े हो। जो पैर के बल चल रहे हैं उनके लिए चलने में कोई दुसाध्य घटना नहीं। अब तुम उपवास करो, आग में तपाओ, धुनी रमाओ, नाहक शरीर को कष्ट दो, सताओ, 1000 तरह के पागलपन करो और फिर तुम कहो कि परमात्मा को पाना बड़ी दुसाध्य घटना है, तो ठीक ही कह रहे हो। जहां तुम सहज पहुंच सकते थे वहां तुम असहज होकर पहुंच रहे हो, तो दुसाध्य मालूम होता है, तुम्हारे पहुंचने में भूल हो रही। लेकिन असाध्य को आदमी क्यों चुनता है ये भी समझ लेना चाहिए। सिर के बल चलने का मजा क्या है जबकि तुम्हारे पास पैर? सिर के बल चलने का एक मजा है और वो मजा ये है, मजा है अहंकार का मजा। मुल्ला नसुद्दीन एक झील में मछलियां मार रहा था, घड़ी दो घड़ी में देखता रहा, उसकी मछलियां पकड़ में कुछ आती नहीं, झील में मछलियां हैं भी नहीं ऐसा मालूम होता। मैंने उससे पूछा, नसरुद्दीन इस झील में मछलियां मालूम नहीं होती, तुम कब तक बैठे रहोगे? वो पास की दूसरी झील है, वहां क्यों नहीं मछलियां मारते? यहां कोई दूसरा मछुआ दिखाई भी नहीं पड़ता, वहीं सब मछुए। नसरुद्दीन ने कहा, वहां मारने से सारी क्या, अरे वहां इतनी मछलियां कि मछलियों को तैरने के लिए जगह भी नहीं, वहां मारी तो क्या मारी, यहां मछली मारो तो कोई बात। असाध्य में भी आकर्षण है, जितना असाध्य काम हो उतना अहंकार मजबूत होता है। यहां मछली मारो तो कुछ है, जो सभी कर रहे हैं वही तुमने किया तो क्या सार है? सभी पैर के बल चल रहे हैं, तुम भी चले तो क्या मजा, सिर के बल चलो। मेरे देखे परमात्मा से कोई संबंध नहीं है कठिनाइयों का, कठिनाइयों का संबंध अहंकार से, अहंकार कठिन को करने में मजा लेता, क्योंकि सरल तो सभी करते हैं, उसमें क्या सार है? अगर तुम किसी से कहो कि हम पैर के बल चलते तो लोग कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सभी चलते, लेकिन अगर तुम सिर के बल चलो तो अखबारों में नाम छपेगा, तो लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, लोग तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएंगे कि तुम्हें कोई सिद्धि मिल गई कि तुम सिर के बल चलते हो। अहंकार की पूजा तभी हो सकती है जब तुम कुछ असाध्य करो, जैसे हिलरी चढ़ गया एवरेस्ट पर तो सारी दुनिया में खबर हुई। अब तुम जाओ और पुणे की छोटी मोटी पहाड़ी पे चढ़ के खड़े हो जाओ और झंडा लगाने लगो और तुम कहो कोई अखबार वाला भी नहीं आ रहा, कोई फोटोग्राफर भी नहीं आ रहा, मामला क्या है? आखिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है? हिलरी के साथ इतना शोरगुल मचाया, इतिहास में नाम अमर रहेगा सदा के लिए, और हमारा कुछ भी नहीं हो रहा, हम भी वही कर रहे हैं, उसने भी झंडे गाड़ा हुआ, लेकिन एवरेस्ट पर चढ़ना कठिन है। 50-60 साल से लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब एक आदमी चढ़ पाए। इसलिए धीरे धीरे वहां रास्ता बन जाएगा, बस जाने लगेगी, कभी ना कभी जाएगी कोई। सदा इतनी देर तक एवरेस्ट अपने को बचा नहीं सकता आदमी से, जब एक आदमी पहुंच गया तो सिलसिला शुरू हो गया। अभी कुछ देर पहले औरतें भी पहुंच गई, जब औरतें भी पहुंच गई तब और पहुंचने को क्या बाकी रहा, सब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। थोड़े दिन में वहां होटलें और बसें सब पहुंच जाएंगी, फिर जाकर तुम झंडा गाड़ना जब बस वगैरह सब चलने लगे वहां, तुम कहोगे ये वही जगह है जहां हिलरी ने झंडा गाड़ा,
बड़ा भेदभाव हो रहा है, बड़ा पक्षपात हो रहा है। कठिन में अहंकार को मजा है। आदमी कई चीजों को कठिन कर लेता ताकि

परम विराम में यात्रा शून्य जहां हो जाती। साधारणतः लोग सोचते हैं कि परमात्मा को पालेंगे तो फिर यात्रा नहीं होगी। बात बिल्कुल उल्टी, यात्रा अगर तुम अभी छोड़ दो तो अभी परमात्मा मिल जाए। लोग सोचते हैं मंजिल मिल जाएगी तो फिर हम विश्राम करेंगे, हालत उल्टी है, तुम विश्राम करो तो मंजिल मिल जाए। विश्राम ध्यान और समाधि का सूत्र है, श्रम अहंकार का सूत्र है। इसलिए तुम पाओगे कि जितना जिस धर्म के भीतर श्रम की व्यवस्था है साधु के लिए, उतना ही अहंकारी साधु होगा। जैनियों का साधु जितना अहंकारी, उतना हिंदुओं का नहीं। क्योंकि जैन साधु कहेगा हिंदू साधु इसमें रखे क्या, कोई भी हो जाए। जैन साधु कठिन मामला है, एक बार भोजन, अनेक अनेक उपवास, सब तरह की कठिनाइयां। फिर जैनों में भी दिगंबर और स्वतांबरों के साधु हैं। दिगंबर साधु कहते हैं स्वतांबरों में क्या रखा, कपड़े पहने बैठे। साधु तो दिगंबर का है, इसलिए दिगंबर साधु में तुम जैसे अहंकार को चमकता हुआ पाओगे कहीं भी ना पाओगे। देह तो सूखी होगी, हड्डी हड्डी होगी, क्योंकि बहुत उपवास, नग्न रहना, धूप ताप सहना, लेकिन अहंकार बड़ा प्रज्वलित होगा। अकल उसकी वैसी जैसी हिलेरी की। हिंदुस्तान में मुश्किल से 20 दिगंबर मुनि है, स्वतांबर मुनि तो 5-7 हजार, हिंदुओं के तो सन्यासी 50 लाख, और अगर मेरी चले तो सारी दुनिया को सन्यासी कर दूं। इसलिए मेरे सन्यासी होने में तो अहंकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई मैं कह ही नहीं रहा हूं कि तुम ऐसा करो वैसा करो। एक बहुत ही सरल मामला है, तुम गिरुए कपड़े पहन लो, सन्यासी हो गए। सन्यास सरल हो तो अहंकार को मजा कहां। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सन्यास आप देते हैं तो इसके लिए कोई विशेष आयोजन करना चाहिए। विशेष आयोजन सन्यास के लिए, वो ठीक कहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है, अगर जैन दीक्षा होती तो देखा कैसा बैंड बाजे घोड़ा इत्यादि बजता है और सब मजा आता है और लगता है कोई बड़ी घटना घट रही, कोई सिंहासन पर चढ़ाया जा रहा। सन्यास भी सिंहासन जैसा हो गया और लोग जय जयकार करते हैं कि कोई बड़ी घटना घट रही। और मैं सन्यास ऐसा चुपचाप दे देता हूं, किसी को पता नहीं चलता, पोस्ट से भी दे देता हूं, मुझे भी पता नहीं चलता कौन सज्जन है, उनको भी पता नहीं चलता। मेरे देखे सन्यास सरल होना चाहिए, मेरे देखे परमात्मा विश्राम में मिलता है, अहंकार में नहीं। कृत्य नहीं है, खोज नहीं है, परमात्मा मिला ही हुआ है। तुम जरा हल्के हो जाओ, तुम जरा शांत हो जाओ, तुम जरा रुको, अचानक तुम पाओगे वो सदा से था। आखिरी प्रश्न, हमारे शरीर में कोई 20 अरब कोशिकाएं और शरीर में प्रतिक्षण रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहती है, आप या अष्टावक्र जब कहते हैं कि दृष्टा बनो, तब यह बात आप किससे कहते हैं? ये कौन है जो कह रहा है कि शरीर में 20 अरब कोशिकाएं? निश्चित ही कोशिकाएं नहीं कह रहे, एक कोशिका बाकी कोशिकाओं का हिसाब भी नहीं लगा सकती। ये 20 अरब कोशिकाएं हैं शरीर में, अरबों खरबों सेल हैं शरीर में, ये कौन कह रहा है? ये किसने पूछा? ये किसको पता चला? जरूर तुम्हारे भीतर कोशिकाओं से भिन्न कोई है जो गिनती कर लेता कि 20 करोड़ कोशिकाएं। हमारे शरीर में कोई 20 अरब कोशिकाएं हैं और शरीर में प्रतिक्षण रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहती है, आप या अष्टावक्र जब कहते हैं कि दृष्टा बनो, तब यह बात आप किससे कहते हैं? उसी से जो कह रहा है।

0: कि 20 अरब कोशिकाएं हैं। यदि मस्तिष्क की कोशिकाओं से कहते हैं तो बात व्यर्थ है, क्योंकि बुद्धि नश्वर है। नहीं, हम कह भी नहीं रहे मस्तिष्क की कोशिकाओं से, हम तुमसे कह रहे हैं। अष्टावक्र भी तुमसे बोल रहे हैं। अष्टावक्र इतने बुद्धू नहीं कि तुम्हारे मस्तिष्क की कोशिकाओं से बोल रहे हैं, तुमसे बोल रहे हैं। तुम्हारा होना तुम्हारी कोशिकाओं के पार है, तुम कोशिकाओं का उपयोग कर रहे हो। सच है, जैसे एक कार में बैठा हुआ ड्राइवर कार चला रहा है, दौड़ा जा रहा है, कार की गति से दौड़ा जा रहा है, 100 मील प्रति घंटे चला जा रहा है, लेकिन फिर भी वो जो ड्राइवर भीतर है वो कार नहीं है। और अगर एक सिपाही सीटी बजाए कि रुको, और वो पूछे कि किससे कह रहे हैं, कार के इंजन से, क्योंकि चल तो इंजन रहा है, किससे कह रहे हैं, पेट्रोल से, क्योंकि चला तो पेट्रोल रहा है, किससे कह रहे हैं, पहियों से, क्योंकि दौड़ तो पहिए रहे हैं, तो क्या कहेगा पुलिस का सिपाही, वही मैं तुमसे कहता हूं कि सीटी तुम्हारे लिए बजा रहे हैं। यदि आप आत्मा को जगा रहे हैं तो भी बात व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा तो जागी ही हुई है, उसको जगाना और पहचानो कहना तो बेवकूफी। बिल्कुल ठीक बात है, आत्मा तो जागी हुई रही, उसको जगाने का कोई उपाय नहीं, और हम उसको जगा भी नहीं रहे। मामला कुछ ऐसा है कि तुम बने हुए पड़े हो, जागे हुए पड़े और आंखें बंद किए। सोए को जगाना तो बहुत आसान है, हिलाओ डुलाओ, पानी छिड़को, जागेगा। जागा हुआ अगर कोई आदमी पड़ा हो आंखें बंद करके ढोंग करता हो सोने का, इसको कैसे जगाओ, छिड़को पानी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिलाओ डुलाओ, वो हिल डुल के फिर करवट लेके सो जाता है, पुकारो नाम सुन लेता है, बोलता नहीं, ऐसी तुम्हारी हालत है। जागे हुए को जगाना कोई अर्थ नहीं रखता, लेकिन जागा हुआ सोने का बहाना कर रहा है, इसलिए जगाने की जरूरत है। सोए हुए को जगा नहीं रहे क्योंकि आत्मा सो नहीं सकती, जो सोया है वो शरीर है, जो शरीर है उसे जगाया नहीं जा सकता, और जो आत्मा जागी हुई है उसे जगाने का कोई अर्थ नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हो, बड़े ज्ञान की बात कह रहे हो, मगर उधार होगी, क्योंकि खुद की समस्या आई होती तो पूछते ही नहीं। अष्टावक्र या मैं उसको जगा रहे हैं जो जागा हुआ है और भूल गया कि हम जागे हुए, जो जागा हुआ है और सोने के बहाने में पड़ गया है, सोने का खेल खेल रहा है। इसलिए तो कठिनाई है जगाने में, बड़ी कठिनाई है। आप लोगों को भ्रम में तो नहीं डाल रहे हैं, तुम सोचते हो लोग भ्रम में है नहीं। अगर लोग भ्रम में नहीं है तो निश्चित ही मैं भ्रम में डाल रहा हूं, मगर अगर लोग भ्रम में नहीं है तो भ्रम में डाले कैसे जा सकेंगे। इतने बुद्ध पुरुष भ्रम में डाले जा सकते हैं, और अगर लोग भ्रम में, तो जो मैं कर रहा हूं वो भ्रम के बाहर लाने की चेष्टा है। जो भी तुम हो उससे उल्टा मैं कर रहा हूं। अगर तुम सोचते हो तुम भ्रम में हो तो ये चेष्टा जगाने की, अगर तुम सोचते हो तुम जागे हुए हो तो ये चेष्टा तुम्हें भ्रम में डालने की, लेकिन अगर तुम जागे हुए तो कौन तुम्हें भ्रम में डाल देगा। ख्याल रखना, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें भ्रम में कोई भी नहीं डाल सकता। और तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें कोई जगा भी नहीं सकता। जगाने की चेष्टा कोई कर सकता है, लेकिन जब तक तुम सहयोग ना करोगे तुम जागोगे नहीं, क्योंकि नींद थोड़ी है कि कोई तोड़ दे। तुम बने हुए पड़े हो, तुम्हारा सहयोग जरूरी है। सहयोग का अर्थ ही शिष्यत्व है, सहयोग का अर्थ ही है कि कोई जगाने वाले के पास तुम जाते हो, तुम कहते हो मेरी पुरानी आदत हो गई अपने को धोखा देने की, जरा मुझे साथ दे, जरा मुझे सहारा दे कि इस आदत के बाहर निकाल ले। एक युवती मेरे पास आई और उसने कहा कि उसे कुछ मादक द्रव्य लेने की आदत हो गई, बाहर आना चाहती, बड़ी आकांक्षा है बाहर निकल आने की, बड़ी आतुर है कि किस तरह बाहर निकल आए, लेकिन वो जो आदत पड़ गई मादक द्रव्यों की वो इतनी गहरी हो गई है, वो शरीर की कोशिकाओं में पहुंच गई। अगर न ले मादक द्रव्य तो ऐसी पीड़ा और बेचैनी सारे शरीर में होती है कि न तो सो सकती, न उठ सकती, न बैठ सकती, तो लेना ही पड़ता है, और लेती है तो पीड़ा होती मन को कि ये क्या जाल हो गया। अब वो मेरे पास आई कि मुझे बाहर निकालने आपके हाथ का सहारा चाहिए। बस ऐसी ही अवस्था है। जन्मों जन्मों तक सोने के अभ्यास को तुमने बहुत गहरा कर दिया है, जागे हुए को सोने के भ्रम में डाल दिया है, सम्राट को भिखारी मान लिया, लेकिन इतने जन्मों तक माना है कि आज अपने ही अभ्यास के कारण सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होता। तुम मेरी बात सुन ले सकते हो, उससे कुछ भी ना होगा, जब तक कि तुम उसे गुनो ना, जब तक कि तुम राजी ना हो जाओ। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें कोई जगा ना सकेगा, नहीं तो एक बुद्ध पुरुष काफी था, शोरगुल मचा के सबको जगा देता, ढोल ढमास पीट देता और सबको जगा देता। इधर 100 आदमी सो रहे हो तो एक आदमी जगाने के लिए काफी, वस्तु तो आदमी की भी जरूरत नहीं, अलार्म घड़ी भी जगा देती। एक आदमी आ जाए और ढोल पीट दे सब उठ जाएंगे, घंटा बजा दे सब उठ जाएंगे। लेकिन ये क्यों नहीं हो सका कि बुद्ध पुरुष हुए, महावीर हुए, अष्टावक्र हुए, कृष्ण हुए, क्राइस्ट हुए, जरथुस्र, लाओसु, इन लोगों ने ऐसा क्यों ना किया कि जोर से घंटा बजा देते सारी पृथ्वी जाग जाती। घंटा खूब बजाया मगर कोई सो रहा हो तो जागे, यहां बने हुए लोग पड़े, वो आंखें बंद किए पड़े, वो सुन लेते हैं घंटे को, वो कहते हैं बजाते रहो देखें कौन हमको जगाता है। जब तुम जागना चाहोगे तो जागोगे। भ्रम में मैं तुम्हें डाल नहीं सकता, भ्रम में तो तुम हो, अब और भ्रम में तुम्हें क्या डाला जा सकता है। तुम्हें और भी भटकाया जा सकता है, तुम सोचते हो और कुछ भटकने को बचा है, इससे नीचे तुम और गिर सकते हो, गिरने की कोई और जगह है। लोभ जितना तुम्हारे भीतर है इससे थोड़ा इंच भर और ज्यादा हो सकता है, क्रोध तुम्हारे भीतर है इससे थोड़ा और ज्यादा हो सकता है, एक रत्ती मासा। वासना ने जैसा तुम्हें घेरा है और वासना बढ़ सकती, तुम आखिरी जगह खड़े हो, जो प्रथम होना चाहिए वो आखिर खड़ा है, जो सम्राट होना चाहिए वो भिकमंगा होकर खड़ा है, इससे पीछे तुम अब जा भी नहीं सकते, इसके पार गिरने का उपाय भी नहीं है, तुम्हें भ्रम में डालने की कोई सुविधा नहीं है, कोई डालना भी चाहे तो डाल नहीं सकता। हाँ कोई इतने कर सकता है ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे भ्रम बदल दे, एक भ्रम से तुम उब जाओ तो दूसरा भ्रम दे दे, यही साधु संन्यासी करते रहते, संसार का भ्रम उखड़ने लगा, ऊप पैदा होने लगी, खूब जी ली, अब कुछ सार नहीं, देख लिया तो अध्यात्म का भ्रम पैदा करते, कहे कि चलो अब स्वर्ग का मजा लो, अब थोड़ा पुण्य करो, त्याग तपश्चर्या करो, स्वर्ग में आप सराएं भोगो, यहां बहुत भोग ली कुछ पाया नहीं, यहां चुल्लू चुल्लू शराब पीते रहे, वहां बहिष्ट में फिरदौस में झरने बह रहे शराब के, डुबकियां लगाना, यहां क्या रखा है, स्वर्ग में स्वर्ण के महल है, हीरे जवाहरातों के वृक्ष है, वहां मजा लो, कल्प वृक्ष है उनके नीचे बैठो, यहां तो रोना पीना रोना धोना खुद कर लिया, लेकिन ये नया भ्रम है। मैं तुम्हें कोई नया भ्रम नहीं दे रहा, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूं काफी भ्रम देख लिए, अब थोड़ा जागो, साक्षी भाव कैसे भ्रम हो सकता है, थोड़ा सोचो, सिर्फ साक्षी होने को कह रहा हूं, जो भी है उसे देखने को कह रहा हूं, कुछ करने को कहता तो भ्रम पैदा होता, तुमसे कहता कि ये छोड़ के ये करो तो भ्रम पैदा होता, तुमसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, जो भी कर रहे हो जहां भी हो, भोगी हो, योगी हो, जो भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मस्जिद में, मंदिर में हो, जहां भी हो, जागो, जाग के देखो, जागने में कैसे भ्रम हो सकता है।
1: हवस्त आदरणीय श्रोता, आजको यो प्रवचन श्रृंखला यति नै। यसको बाँकी अंश आगामी कार्यक्रममा सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।

0: चाहिए यहाँ सुंदर यूनुंचा एफएम पचास ज्योति ज्योति
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

0: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।
1: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। एक बार फिर से लौट आई हूं अपनी सुपर हिट एवरग्रीन गानों की प्लेलिस्ट और उनसे जुड़े कुछ किस्से, कुछ कहानियां लेकर। आज हम उन फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं विच वर आई थिंक अहेड ऑफ इट्स टाइम। वो फिल्में जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहा करती थी और ज्यादा सुर्खियां बनाती थी, उन्हीं में से एक थी गुलजार साहब की आंधी, जो 1975 में रिलीज हुई थी। ये वो टाइम था जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। ये फिल्म थिएटर्स में तो काफी चल रही थी, लेकिन फिल्म के कुछ हफ्तों बाद इसे बैन कर दिया गया था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि फिल्म की लीड एक्ट्रेस सुचित्रा सेन जी का रोल एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का था, जिसके साड़ी से लेकर पर्सनल लाइफ सब कुछ इंदिरा जी से रिजेंबल करता था। इनफैक्ट सुचित्रा जी का वॉकिंग स्टाइल से लेकर स्पीच डिलीवरी भी इंदिरा जी से मैच करता था। और आग में घी तब लगी जब मूवी के कुछ सीन्स में हीरोइन स्मोक और ड्रिंक करती हुई दिखाई दी। इंटरेस्टिंगली द बैन वॉज लेटर रिमूव्ड जब उस टाइम के इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इंदर कुमार गुजराल जी ने यह फिल्म देखी थी। उन्हें फिल्म का इंदिरा जी की लाइफ से कोई कनेक्शन लगा ही नहीं, लेकिन स्टेट रन टेलीविजन चैनल्स पर तो तब ही रिलीज की गई थी जब 1977 में इंदिरा जी इलेक्शंस हार गई थी। वैसे इस फिल्म के हिट होने का एक और कारण था फिल्म का सरप्राइज म्यूजिक, जो कि आर डी बर्मन साहब ने दिया था। सरप्राइज इसलिए क्योंकि वो उस दौरान अपने वेस्टर्न बीट्स के लिए जाने जाते थे, लेकिन आंधी में उन्होंने पूरी तरह से क्लासिकल म्यूजिक दिया था। तो यहां पर सुनाती हूं आपको आंधी फिल्म से ही सुपर हिट गाना लता जी और किशोरदा की आवाज में, और कुछ देर के बाद बात करेंगे एक ऐसी हिंदी फिल्म के बारे में जिसे पूरे होने में 16 साल लग गए थे। कौन सी थी ये फिल्म और इतना लंबा क्यों समय लगाया इस फिल्म ने रिलीज होने में, बताऊंगी आपको। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। एक बार फिर से मैं यहां पर आपका स्वागत करती हूं आज के इस एपिसोड में, जहां पर मैं बात कर रही हूं कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा खबरें बनाई थी, यानी कि द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म्स दैट इंडियन सिनेमा हैज एवर सीन। 1960 की फिल्म, वो फिल्म जिसने इंडियन सिनेमा को एक नया रूप दे दिया था, उस फिल्म के बारे में ना बात करें ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर इस फिल्म को बनने में 16 साल जो लग गए थे। मैं बात कर रही हूं द इटर्नल क्लासिक मुगले आजम की। आखिर इतने साल लगे क्यों इस फिल्म को बनने में? वो इसलिए क्योंकि इसकी मेकिंग में काफी सारे प्रॉब्लम्स आई थी। सबसे पहले तो फिल्म के फाइनेंसर ने बैकआउट कर दिया था, फिर कास्टिंग में काफी चेंजेस आए, चैलेंजेस आए। ऑल्सो फिल्म शीश महल में शूट की जानी थी और उसका रेप्लिका बनाने में ही 2 साल लग गए थे। इतना ही नहीं, फिल्म में मधुबाला जी की ज्वेलरी इतनी ज्यादा हैवी थी कि उसके कारण उन्हें गर्दन में प्रॉब्लम हो गई थी और वो बिस्तर में थी, बेड रिडन थी फॉर अ लॉट ऑफ डेज। ये फिल्म उस समय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे एक ऐसी भी फिल्म थी जिसके लीड एक्ट्रेस को थ्रेटनिंग लेटर्स और कॉल आते थे, और वो भी बॉलीवुड के ही एक एक्ट्रेस की मम्मी से। कौन सी थी ये फिल्म जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा था और कौन थी ये एक्ट्रेस, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं मुगले आजम फिल्म का वो आइकॉनिक गाना जिसे शीश महल में शूट किया गया था और जिसका कॉस्ट प्रोडक्शन 10 मिलियन का था। मतलब उस समय में 1 मिलियन में तो मूवीज बन जाया करती थी। इस गाने को लता जी ने बाथरूम में गाया था क्योंकि उस समय रिवर्ब हुआ नहीं करता था, टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, तो इसलिए थोड़ी गूंज आए गाने में, इसलिए इस गाने को बाथरूम में रिकॉर्ड किया था। मैं बात कर रही हूँ फॉरएवर एवरग्रीन क्लासिक सॉन्ग प्यार किया तो डरना क्या की। सुनिए ये गाना और मैं रुचि लौटूंगी कुछ ही देर में।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल फिल्मों से गाने लेकर के आई हूं मैं, जिनके किस्से कहानियां आपको आज तक भी याद होंगे। फिल्में अक्सर एक्टर्स की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, इंटिमेट सीन्स और एक्ट्रेसेस के बोल्ड सीन्स के लिए सुर्खियों में रही हैं, लेकिन इन सबका एक्टर्स की पर्सनल लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता था। 1982 में बी.आर. चोपड़ा जी की फिल्म निकाह रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक औरत को समाज, परिवार और इवन पति से कैसे ट्रीट किया जाता है ये दर्शाया गया था। फिल्म की लीड एक्ट्रेस सलमा आगा जी का कैरेक्टर औरतों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग था। ऑल्सो इस फिल्म का टाइटल पहले तलाक तलाक तलाक रखा गया था, बट देन एक दूसरे फिल्म मेकर बना रहे थे एक फिल्म जिसका नाम था डिवोर्स, तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और इसलिए इस फिल्म का नाम चेंज कर दिया गया और निकाह रखा गया। वैसे इस फिल्म के लीड रोल के लिए बी.आर. चोपड़ा जी को फ्रेश फेस चाहिए था और तब उनकी मुलाकात हुई सलमा आगा जी से, जो कि एक टोटल न्यू कमर थी बॉलीवुड में। चोपड़ा जी ने उन्हें ट्रेन भी किया और लॉन्च भी किया एज द हीरोइन ऑफ निकाह। पर इस रोल के लिए अमृता सिंह जी की माँ रुखसाना सुल्तान जी चाहती थी कि अमृता जी को लिया जाए। शी ट्राइड रियली हार्ड टू इन्फ्लुएंस बी.आर. चोपड़ा जी, लेकिन रोल के नीड्स के मुताबिक चोपड़ा साहब एक फ्रेश फेस को ही लेना चाहते थे और उन्होंने पहले ही जीनत अमान को इसीलिए रिजेक्ट कर दिया था कि वो इस रोल के लिए ठीक नहीं थी, क्योंकि वो जाना पहचाना चेहरा हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने सलमा आगा जी को साइन किया, जिसके कारण सुल्ताना जी को बहुत गुस्सा आया और वो सलमा जी को कॉल पे कॉल किया करती थी, लेटर्स भेजा करती थी ये कहने के लिए कि वो फिल्म ना करे, छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेटर्स में इनफैक्ट सलमा जी को वो वापस लंदन लौट जाने की धमकी भी देती थी, लेकिन इस सब का सलमा जी पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने सारी धमकियां इग्नोर की और वो फिल्म के रिलीज तक इंडिया में ही रही। चलिए, तो इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद ये फिल्म रिलीज हुई थी, तो इसी फिल्म का गाना अब तो सुनना बनता ही है। गुलाम अली साहब की आवाज में सुनिए ये गाना, मैं रुचि आपके साथ।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

राम तेरी गंगा मैली फिल्म से था ये गाना। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ। आज बात कर रहे हैं हम कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो कि समय से पहले ही रिलीज हो गई थी। मुझे लगता है तभी एक फिल्म कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है जब लोग ऐसा कंटेंट देखने के लिए मेंटली सोशली तैयार नहीं हुए होते हैं। वैसे ये जो फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म के रिलीज में भी बहुत दिक्कतें आई थी क्योंकि इस फिल्म में मंदाकिनी के काफ़ी बोल्ड सीन्स थे और उससे ज़्यादा कुछ अगर कंट्रोवर्शियल था तो वो था एक बेबी ब्रेस्ट फीडिंग सीन। सेंसर बोर्ड ने काफ़ी अपोज किया था उस समय, लेकिन डायरेक्टर राजकुमार जी ने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा। वैसे राजकुमार जी की काफ़ी सारी फिल्में कंट्रोवर्शियल रही हैं जिनमें विमेन का कैरेक्टर बहुत ही बोल्ड रखते थे, वन ऑफ विच इज़ ऑब्वियसली सत्यम शिवम सुंदरम। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए जीनत अमान जी एक गांव की लड़की की ही वेशभूषा में तैयार होकर के पहुंची थी राज कपूर जी के ऑफिस और उसी डायलेक्ट में उसी एक्सेंट में बात कर रही थी राज कपूर जी से, और वो इतना इम्प्रेस हुए जीनत अमान जी के डेडिकेशन को देख करके कि उन्होंने तुरंत जीनत अमान जी को साइन कर लिया था। किसी और का उन्होंने ऑडिशन भी नहीं लिया था, सिर्फ बोल दिया कि बस अब ये रोल सिर्फ जीनत जी ही करने वाली हैं। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने बड़े पर्दे पर इंटरनल ब्यूटी को सही मायने में दर्शाया था। ये फिल्म कंट्रोवर्शियल तो थी, लेकिन इस फिल्म के लिए जीनत अमान एंड शशि कपूर जी दोनों को ही काफ़ी तारीफें भी मिली थी, स्पेशली फॉर हर लुक। हालांकि इस फिल्म के बाद उन्हें एक सेक्स सिंबल बना दिया गया था, लेकिन जीनत अमान जी को इस बात का कभी कोई रिग्रेट नहीं रहा। वैसे क्या आप जानते हैं राज कपूर जी इतने सुपरस्टिशियस थे कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले उन्होंने पीना, दारू पीना या फिर नॉन वेज खाना खाना सभी को छोड़ दिया था भगवान को खुश करने के लिए कि बस ये मेरी फिल्म जो है ना ये हिट हो जाए। हिट तो हुई ही और इसके गाने सुपर हिट, इसीलिए सुनाती हूँ आपको इसी फिल्म से गाना भोर भय पनघट पे वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं रुचि आपके साथ।

0: 104A.
1: You are listening to Weekend Classic Radio Show.
2: Weekend Classic Radio Show. मैं हूं रुचि आपके साथ. हिंदी सिनेमा में काफी सारी पुरानी फिल्मों का रीमेक बनाया गया है. कुछ पार्ट टू कहलाती है तो कुछ अडेप्टेशन. शो की शुरुआत में आज जब हम ये कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्मों की बात कर ही रहे हैं तो हमने आंधी फिल्म की बात की थी क्योंकि उसे बैन किया गया था. लेकिन क्या आप जानते हैं साल 2017 में फिर से उसी टॉपिक पर मधुर भंडारकर जी ने एक और फिल्म बनाई विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द टॉपिक ऑफ इमरजेंसी पीरियड. फिल्म का नाम था इंदु सरकार, जो जब से अनाउंस की गई थी तब से ही सुर्खियों में बनी रही. ये फिल्म मधुर भंडारकर जी के हिसाब से 70% फिक्शनल स्टोरी थी और 30% रियल स्टोरी. लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ही डराया गया, धमकाया गया, फिल्म को ज्यादा चलने भी नहीं दिया. सुना है कि लोग उन्हें कालिक पोतने की, चप्पल की मालाएं पहनाने की धमकियां दिया करते थे. लेकिन फिर भी मधुर भंडारकर जी डरे नहीं. कुछ 12 कट्स उन्हें कहा गया था कि लगाएं, वो CBFC ने कहा था कि अपनी फिल्म में लगाएं. उन्होंने इस फैसले का आदर किया, रिस्पेक्ट करते हुए ये कट्स अपनी फिल्म में लगाए और ये फिल्म रिलीज की. इंदु सरकार फिल्म से जाते जाते ये गाना सुनाती हूँ आपको, चढ़ता सूरज धीरे धीरे. सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो. मैं रुचि आपके साथ.

कैसा लगा आपको ये शो? हर हफ्ते हम क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। रस भरी फिल्मी यादों की यात्रा के मुसाफिरों तैयारी कीजिए। मैं यानी आपका रेडियो दोस्त अमीन सायानी आपको ले चलने वाला हूँ समय की उन सात राहों पर जिन पर हम चलते तो हर वॉल्यूम में हैं लेकिन मैंने कभी उनके बारे में आपको बताया नहीं। तो देखिए ये है समय का रास्ता नंबर एक। ये रास्ता है वो साल जिस पर हम उस वॉल्यूम में रोशनी डाल रहे हों। जैसे आज बारी है 1960 के बेमिसाल गीतों के और इस रास्ते पर आपके लिए छाओ के गीतों के साथ साथ तैयार खड़ी हैं दो टॉप की सालाना संगीत सीढ़ियां, मिनी सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी पर पांच झलके हैं उस साल के दसवें से लेकर छठे गीत तक की झलके। दसवें नंबर पर था तू नहीं और सही का गीत। तू है

और साहब इसके फौरन बाद ये देखिए आ गया समय का रास्ता नंबर 2। इस रास्ते पर गीतों के साथ आती हैं, इन गीतों से जुड़ी हुई खास घटनाएं हैं। तो भाई पहले गीत सुनिए, यानी 1960 के गीत नंबर 9 की झलक, और फिर आएगी इसकी एक मजेदार खबर।

कट कट कट भाई, यहाँ भी उस साल चली थी सेंसरों की कैंची। संगीतकार आनंद जी ने मुझे हाल ही में बताया है कि फिल्म सेंसर वालों ने शायद ये सोचा होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सबको कैसे चल सकता है, राज कपूर जैसा महान एक्टर। तो उन्होंने ऑर्डर दिया छलना मेरा काम ये शब्द जो है ये काटो और उनकी जगह कुछ और लगाओ। तो बेचारे कल्याण जी भाई को उस गीत की मरम्मत यूं करनी पड़ी।

अब देखिए, मधुबाला की सच्ची कहानी मैंने आप में बताई थी, याद है ना आपको, मगर एक बात वहां कहनी रह गई थी बनो भाइयों, और वो ये कि एक तो असली भारी लोहे की जंजीरों ने उनकी सेहत पर हमला किया ही था, मगर मधुबाला इतनी अच्छी और सच्ची एक्ट्रेस थी कि पूरी तरह से कैदी लगने के लिए उन्होंने कई दिनों तक अपना खाना पीना बहुत कम कर दिया था, और इससे भी उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा। बहरहाल दोस्तों, फिल्मी हस्तियों की इस तरह की कहानियां चलती हैं गीतमाला की छाव में के समय के रास्ते नंबर 3 पर, और अब हम उस साल के पायदान नंबर 7 पर चढ़कर उस जमाने के नए सिंगर महेंद्र कपूर की आवाज में जुबली स्टार राजेंद्र कुमार बनकर भोली भाली प्यारी नंद

ये गीत था फिल्म धूल का फूल का और 1960 की सालाना पायदान नंबर 6 के गीत की फिल्म का नाम। भाई अगर आज मीना कुमारी होती ना तो यूं बताती।

बस बहन और भाइयों, यहाँ पर आकर हम 1960 के टॉप हिट गीतों की पायदाने रोक देते हैं और उस साल की छाओं के गीतों का सिलसिला एक बड़े ही मजेदार, बड़े ही अनोखे गीत से शुरू करते हैं, जिसमें यूं कहिए कि ए बी सी थी, या यूं कहिए कि क ख ग अ ई ऊ थी, भारत की उस जबरदस्त भाषा की जिसमें ढलकर कई चोटी के शायरों ने हमारे फिल्मी संगीत को शब्दों से संवारा। वो भाषा है हिंदी की प्यारी बहनियां, उर्दू। तो बस आप सोचिए कि आप मेरे साथ बन गए हैं बच्चे और हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं उर्दू।

0: 104.8.
1: सिल्वर प्यालेस विश्वसनीय सुरक्षित र भर पर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चाँदी का एक्सक्लुसिव गहना लगायत भाडाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चाँदी का सामानहरूको लागि सिल्वर प्यालेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामानमा 100% शुद्धताको ग्यारेन्टी दिने एक मात्र सिल्वर प्यालेस पसल नम्बर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा
2: हरेक सियो धागो र टाकसँग जोडिएको हुन्छ एउटा कथा कथा परम्पराको कथा सिप र सुन्दरताको पुस्तौंदेखि बुनिएको पहिचानको र ती पहिचानको आकार दिने कल्पनाको
3: विगत 50 वर्षदेखि यी कल्पनालाई यथार्थमा परिणत गर्दै सर्वप्रिय लोकप्रिय सबैमा मनमा बस्न सफल श्रेष्ठ टेलरिङ सेन्टर
2: श्रेष्ठ टेलरिङ सेन्टर सिन्स 1975
4: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो
5: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ
4: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन सुन चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्
6: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क मुनि
7: सम्पर्क नम्बर 5320411 9820776888
4: जेजे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान
8: बहनों और भाइयों आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में
9: और भाई यही उर्दू भाषा अब हमें इशारा कर रही है कि देखो देखो अब शुरू हो रहा है समय का रास्ता नंबर 4 इस रास्ते पर सजा करती हैं मशहूर फिल्मी हस्तियों की बोलती हुई आवाजें अच्छा इस रास्ते पर बहनों भाइयों समय का कोई बंधन नहीं लगता हम चाहे कहीं से भी कभी से भी फिल्म स्टारों की पुरानी रिकॉर्डिंग्स ले आते हैं आपके लिए अब देखिए लव इन शिमला जिसका गीत अभी भी आपने सुना उसकी शानदार हसमुख चंचल सुंदर मिलनसार बड़ी ही गजब की हीरोइन थी कौन या साधना और डायरेक्टर थे बड़े ही गुणी डायरेक्टर आर के नैयर फिल्म 1960 में आई और उसके कुछ अरसे बाद साधना और आर के नैयर की शादी हो गई और उसके कुछ साल बाद साधना ने मुझे अपने पति के बारे में यूं बताया था
10: उन्होंने तो शुरू से ही मेरी तारीफ के बुल बांधने शुरू कर दिए थे जैसे मुझसे अच्छी कोई और एक्ट्रेस हो ही नहीं
11: तो क्या गलत कहा था नैयर साहब ने अच्छा फिर क्या हुआ
10: लव इन शिमला के बाद कुछ अरसे तो हम लोग बिल्कुल अलग रहे
11: अच्छा
10: झगड़ा हो गया था
11: ओहो
10: और फिर जो मिले तो शादी के अटूट बंधन में बंध गए
11: हाँ भाई होना भी ऐसा ही चाहिए था अच्छा कुछ नैयर साहब की पर्सनैलिटी के बारे में बताइए साधना जी किस टाइप के आदमी हैं वो
10: बड़े मस्त मनमौजी टाइप के आदमी हैं बड़े ठाट बाट से रहते हैं वो अच्छी से अच्छी जगह रह चुके हैं कीमती से कीमती गाड़ी चला चुके हैं मगर पैसे की उन्हें बिल्कुल कदर नहीं
11: अच्छा
10: हजारों हो या लाखों या कुछ भी ना हो उनके लिए सब बराबर है वैसे वो अपने आप पर कुछ खर्च नहीं करते पैसे से ज्यादा उनकी नजर में इंसान की कीमत है
9: आर के नैयर अब इस दुनिया में नहीं रहे और गीतमाला की छाव में का ये वॉल्यूम नंबर 15 रिकॉर्ड हो रहा है कब सन 2010 में जब साधना है तो मगर कई वर्षों से नजर नहीं आई वो आंखों की बीमारी ने उस लाजवाब अदाकारा को गुमनामी की छाव में डाल दिया
8: मगर मैं उनका दोस्त और उनका जबरदस्त फैन। पहले उन्हें सलाम और हेलो कहता हूँ, हेलो साधना, और फिर बहनों भाइयों

0: कुछ
1: तो मैनोर भाइयों, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा उस रास्ते पर जिस पर मेरी कहानियां सजी हुई होती हैं, यानी समय का रास्ता नंबर 5। ये तो आप जानते ही हैं बहनों भाइयों कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो खुशी की कितनी लहरें दौड़ पड़ती हैं पूरे परिवार में। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं भी खुशी से फूला नहीं समाया, मगर मुझे सिर्फ सुबह और फिर बड़ी देर में रात को अपने बेटे राजिल को देखने का मौका मिलता था, क्योंकि भाई दिन भर मैं दफ्तर में रेडियो सिलोन के प्रोग्रामों में लगा रहता था, न सिर्फ गीतमाला बल्कि कई और प्रोग्राम और फिल्मों की रेडियो पब्लिसिटी भी। और जब रात को मैं घर लौटता ना तो मेरा बेटा अगर कभी जाग भी जाता तब भी मैं उसे अपनी बाहों में उठाता नहीं था, क्योंकि बहुत डरता था मैं कि अरे इतना छोटा सा बच्चा है, मैंने उसे ठीक से नहीं उठाया, ठीक से नहीं पकड़ा तो कहीं उसकी गर्दन या उसकी कमर न लचक जाए। उसे तो सिर्फ रमा उठाती थी या मेरी अम्मा या फिर आया। मगर जब रमा उसे फिर से प्यार से सुला देती थी तो मैं पास बैठकर माँ बेटे को मुस्कुराकर ताकता रहता था और मुझे यूं लगता था जैसे हवाओं में उस साल का ये खूबसूरत सा खामोश सा गीत हल्के से गूंज रहा हो।

अच्छा भाई, आप तो जानते ही हैं कि 1960 के साल को मैंने गीतमाला की छाओं के लिए 3 वॉल्यूम्स में इसलिए ढाला था क्योंकि उस वर्ष बाप रे इतने ज्यादा लाजवाब गीत थे कि अगर उनका ठीक से जिक्र ना होता तो भाई बड़ी नाइंसाफी होती। अब देखिए ना, एक फिल्म उस साल आई थी जिसका नाम था परख, जिसका सिर्फ एक गीत सालाना संगीत सीढ़ी तक पहुंच पाया, मगर जो 3 और जबरदस्त गीत उस फिल्म में थे उनमें से एक बजा वॉल्यूम 13 में और 2 गीत अब बजेंगे, एक जरा कम और दूसरा काफी ज्यादा।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में।

एक और जबरदस्त म्यूजिकल फिल्म थी 1960 में, जिसके दो छांव वाले गीत मैं यहाँ बजाना चाहता था बहनों भाइयों, लेकिन उनमें से एक तो ऐसा धमाकेदार गीत है कि आज भी हर रेडियो स्टेशन पर साल में कई कई बार बजता है, खासकर बरसातें शुरू होते ही। जी हाँ, फिल्म बरसात की रात का गीत, गरजत बरसत सावन आयो रे। तो भाई वो तो बसा ही है आपके दिल में, और अब तो एक लाइन मैंने भी गा दी, इसलिए मैं वो गीत नहीं बजाऊंगा, उस फिल्म का एक और बड़ा मधुर मगर दर्द के सुरों में डूबा हुआ गीत बजाऊंगा जो आप शायद भूल गए होंगे। सुनिए दिल थाम कर।

लेकिन बहन और भाइयों, मैंने जो आज वादा किया है आपको समय के अलग अलग रास्तों के बारे में बताने का, उस वादे को देखिए मैं आज बड़ी ईमानदारी से निभा रहा हूँ। और आज समय का छठा रास्ता है यही बहुरंगी बहुरूपी शब्द यानी आज। देखिए ना, आपके लिए तो आज यही दिन है जब आप ये वॉल्यूम सुन रहे हैं, मगर भाई मेरे लिए आज वो दिन है जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी इस वॉल्यूम की रिकॉर्डिंग हुई है, हो रही है बल्कि सन 2010 को। और मेरे इस आज से कोई 21 रोज पहले 15 दिसंबर सन 2009 को जब सुबह मैंने भारत के एक बहुत ही बड़े न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज खोला तो देखकर दंग रह गया साहब। दंग इसलिए रह गया बहनों भाइयों कि उसमें इतने वर्षों के बाद श्रीलंका ब्रॉडकास्ट

ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी पुराने रेडियो सिलोन का जिक्र था जी हाँ, और उसमें ये लिखा था कि किस तरह आज भी कोई खास स्पॉन्सरशिप या एडवर्टाइजमेंट्स के बिना भी कैसे कुछ घंटों के लिए ही सही मगर बड़ी बाकायदगी से चल रहा है ये रेडियो स्टेशन जो कई वर्षों तक सारे एशिया में और अफ्रीका तक में भी धूम मचाता रहा था। और जो दो लड़कियां उसे आज भी बड़ी हिम्मत से चलाए जा रही हैं वो हैं पद्मिनी परेरा और ज्योति परमार। बनो भाइयों, उस अखबार के एडिटोरियल में और भी कई लोगों के नाम थे जिन सब की खबर मैं आपको किसी अगले वॉल्यूम में दूंगा, मगर उस लेख में खास तौर पर यह भी लिखा था कि रेडियो सिलोन का जो रेडियो प्रोग्राम लोकप्रियता की एकदम चोटी तक पहुंचा वो आपका यही प्रोग्राम था यानी गीतमाला। तो भाई, आपकी गीतमाला तो करोड़ों संगीत प्रेमियों का प्यार पाती रही करीब 45 वर्षों तक, मगर खुद गीतमाला ने भी तो अपने सभी प्रेमियों को यानी आप सबको अपना दिल देकर आपको अपने नैनों में बसाया था। ये देखिए, उसका सबूत दे रहा है 1960 की छाओं ही का एक बड़ा प्यारा गीत जिसकी भाषा हिंदी नहीं थी बल्कि थी हिंदी से मिलती जुलती रंग रंगीली राजस्थानी।

बहनों और भाइयों, आजकल के जो नौजवान फिल्म फैन है ना, उन्हें तो 50s और 60s की ज्यादातर फिल्मों में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, जिसकी वजह एक ये भी है कि वो फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थीं। मगर साहब, उनके गीतों में वो मिठास, वो रोमांस, वो लगन और वो रंगीनी भी हुआ करती थी कि आज की हसीनाएं भी उन्हें सुनकर कहती हैं हाय, और आज के डैशिंग यंग मैन भी कहते हैं आई से हाउ क्यूट। तो भाई, 1960 का एक ऐसा ही क्यूट क्यूट गाना अब आ रहा है आपके सामने, हैं, आपसे नैन लड़ाने और आपको बाहों में भर दे।

अच्छा खैर, अब जरा प्यार से चलिए बहनों भाइयों, गीतमाला के समय के उस रास्ते पर जिस पर आया करते हैं गीतमाला की छाओ में सुनने वालों के खत। समय का ये रास्ता नंबर 7 वैसे हमारे इन वॉल्यूम में जरा कम आता है क्योंकि आजकल तो खत ढेर सारे आने लग गए हैं बहनों भाइयों और टाइम हमारे पास होता है बहुत कम। मगर एक बड़ा अनोखा खत डोंबिवली के रविंद्र त्रिंबक सिन्नरकर ने ऐसा भेजा है कि मुझे इसे शामिल करना ही पड़ेगा साहब। ये लिखते हैं, अमीन भाई मैं अपनी कार चलाते हुए एक रोज ठाणे जा रहा था, कार के सीडी प्लेयर डेक पर आपकी गीतमाला की छाओ में की एक सीडी लगी हुई थी। मैं सुनकर मजे ले रहा था और पुरानी यादों में खो रहा था कि अचानक ध्यान चूका और एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो प्लीज अमीन भाई आप अनाउंस कीजिएगा कि गाड़ी चलाते हुए सीडी प्लेयर पर अच्छे अच्छे सीडीज कोई भी कभी भी ना सुने। अरे अरे अरे रविंद्र सिन्नरकर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? अजी पिछले 20-30 वर्षों से न जाने कितने करोड़ों लोग हर रोज गाड़ी चलाते हुए अच्छे अच्छे सीडीज या फिर एफएम रेडियो के मजेदार प्रोग्राम सुना करते हैं और इस वजह से तो आज तक किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो भाई बेहतर है कि आप जरा अपनी ड्राइविंग करते हुए बाबूजी धीरे चलना और आइंदा कार में गीतमाला की छाओ में का सीडी लगाने से पहले परमात्मा को याद करके उससे दुआ मांगना कि वो आपके होश हमेशा हमेशा बिल्कुल ठिकाने पर रखे। चलिए एक मधुर भजन 1960 का अभी सुन लीजिए।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सदैव।
1: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में

यहाँ आकर हमें 1960 के खूबसूरत दिल को छू लेने वाले छांव में छुपे गीतों का सिलसिला रोकना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जो टॉप के 5 गीत थे ना उस साल, वो इतने ऑल टाइम ग्रेट गीत थे कि मुझे 5ों का एक एक अंतराल तो बजाना ही पड़ेगा भाई। तो बहनों और भाइयों होशियार, 1960 के 5 सबसे ज्यादा चलने वाले गीत आज फिर चलने को है तैयार। 1960 की वार्षिक पायदान नंबर 5 पर बंबई का बाबू देवानंद के साथ बंगाल की सुलझी हुई सुंदरी सुचित्रा सेन, कभी मुस्कुराती कभी आंसू बहाती।

भाई इस गीत के बारे में ये भी आपको याद दिलाता चलूं कि फिल्म में बस यही एक गीत कलर में था, वैसे कई वर्षों बाद तो पूरी फिल्म ही कलर वर्जन में ढल गई। बहरहाल बनोर भाइयों, यादों में अब एक पायदान और चढ़िए, नंबर 3 पर, दिल भी तेरा हम भी तेरे, मगर धर्मेंद्र और कुमकुम के लिए तन्हाई का घेरा रातों के अंधेरे।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग
2: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
3: वो मलाई फ्रॉक
4: मलाई पनी सूट
5: वो
6: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாடி
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: डिस्ट्रिक्ट मस्ती एंड डांस द बेस्ट ऑफ नॉन स्टॉप हिंदी रिमिक्स ओनली ऑन FM AJ 104.8 MHz.
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो.

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: ये एब्सोल्यूट फ्री स्टाइल क्रोकोडाइल या विद स्टाइल या यू नो आई एम नंबर वन वी हैड अ लॉट ऑफ फन सब्सक्राइब टू मास्टर ऑफ द ड्रॉप दैट्स योर ओनली जॉब बाय।

About to sound dynamics. Yeah. 3:30 a.m. Yeah. देखे थे जो सपने हार जुन के पास हूँ आंखों में चमक है पहले थे आंसू बाकी सब वही है ज्यादा कुछ नहीं बदला हाँ पहले मैं आम था बस आज थोड़ा खास हूँ

0: बोली क्या तो फिल्म हेर्दा खेरि बोली मानौ न
1: मिति गङ्गुदी मङ्सी

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM AJ 104.8 MHz.

0: आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। रस भरी फिल्मी यादों की यात्रा के मुसाफिरों तैयारी कीजिए, मैं यानी आपका रेडियो दोस्त अमीन सायानी आपको ले चलने वाला हूँ समय की उन सात राहों पर जिन पर हम चलते तो हर वॉल्यूम में हैं लेकिन मैंने कभी उनके बारे में आपको बताया नहीं। तो देखिए ये है समय का रास्ता नंबर एक। ये रास्ता है वो साल जिस पर हम उस वॉल्यूम में रोशनी डाल रहे हों, जैसे आज बारी है 1960 के बेमिसाल गीतों के, और इस रास्ते पर आपके लिए छाओ के गीतों के साथ साथ तैयार खड़ी हैं दो टॉप की सालाना संगीत सीढ़ियां, मिनी सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी पर पांच झलके हैं उस साल के दसवें से लेकर छठे गीत तक की झलके। दसवें नंबर पर था तू नहीं और सही का गीत।
1: तू है

और साहब इसके फौरन बाद ये देखिए आ गया समय का रास्ता नंबर 2। इस रास्ते पर गीतों के साथ आती हैं, इन गीतों से जुड़ी हुई खास घटनाएं हैं। तो भाई पहले गीत सुनिए, यानी 1960 के गीत नंबर 9 की झलक, और फिर आएगी इसकी एक मजेदार खबर।

कट कट भाई, यहाँ भी उस साल चली थी सेंसरों की कैंची। संगीतकार आनंद जी ने मुझे हाल ही में बताया है कि फिल्म सेंसर वालों ने शायद ये सोचा होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सबको कैसे चल सकता है, राज कपूर जैसा महान एक्टर। तो उन्होंने ऑर्डर दिया छलना मेरा काम ये शब्द जो है ये काटो और उनकी जगह कुछ और लगाओ। तो बेचारे कल्याण जी भाई को उस गीत की मरम्मत यूं करनी पड़ी।

अब देखिए मधुबाला की सच्ची कहानी मैंने आप में बताई थी, याद है ना आपको, मगर एक बात वहां कहनी रह गई थी बनो भाइयों, और वो ये कि एक तो असली भारी लोहे की जंजीरों ने उनकी सेहत पर हमला किया ही था, मगर मधुबाला इतनी अच्छी और सच्ची एक्ट्रेस थी कि पूरी तरह से कैदी लगने के लिए उन्होंने कई दिनों तक अपना खाना पीना बहुत कम कर दिया था और इससे भी उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा। बहरहाल दोस्तों, फिल्मी हस्तियों की इस तरह की कहानियां चलती हैं गीतमाला की छाव में के समय के रास्ते नंबर 3 पर, और अब हम उस साल के पायदान नंबर 7 पर चढ़कर उस जमाने के नए सिंगर महेंद्र कपूर की आवाज में जुबली स्टार राजेंद्र कुमार बनकर भोली भाली प्यारी नंदा

ये गीत था फिल्म धूल का फूल का और 1960 की सालाना पायदान नंबर 6 के गीत की फिल्म का नाम। भाई अगर आज मीना कुमारी होती ना तो यूं बताती।

बस बहनो भाइयों, यहाँ पर आकर हम 1960 के टॉप हिट गीतों की पायदाने रोक देते हैं और उस साल की छाओ के गीतों का सिलसिला एक बड़े ही मजेदार, बड़े ही अनोखे गीत से शुरू करते हैं, जिसमें यूं कहिए कि ए बी सी थी, या यूं कहिए कि क ख ग अ ई उ थी, भारत की उस जबरदस्त भाषा की जिसमें ढलकर कई चोटी के शायरों ने हमारे फिल्मी संगीत को शब्दों से संवारा। वो भाषा है हिंदी की प्यारी बहनियां, उर्दू। तो बस आप सोचिए कि आप मेरे साथ बन गए हैं बच्चे और हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं उर्दू।

0: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में और भाई यही उर्दू भाषा अब हमें इशारा कर रही है कि देखो देखो अब शुरू हो रहा है समय का रास्ता नंबर 4। इस रास्ते पर सजा करती हैं मशहूर फिल्मी हस्तियों की बोलती हुई आवाजें। अच्छा, इस रास्ते पर बहनों भाइयों समय का कोई बंधन नहीं लगता। हम चाहे कहीं से भी कभी से भी फिल्म स्टारों की पुरानी रिकॉर्डिंग्स ले आते हैं आपके लिए। अब देखिए लव इन शिमला जिसका गीत अभी अभी आपने सुना, उसकी शानदार हंसमुख चंचल सुंदर मिलनसार बड़ी ही गजब की हीरोइन थी कौन, या साधना। और डायरेक्टर थे बड़े ही गुणी डायरेक्टर आर के नैयर। फिल्म 1960 में आई और उसके कुछ अरसे बाद साधना और आर के नैयर की शादी हो गई और उसके कुछ साल बाद साधना ने मुझे अपने पति के बारे में यूं बताया था।
1: उन्होंने तो शुरू से ही मेरी तारीफ के बुल बांधने शुरू कर दिए थे, जैसे मुझसे अच्छी कोई और एक्ट्रेस हो ही नहीं।
2: तो क्या गलत कहा था नैयर साहब ने? अच्छा फिर क्या हुआ?
1: लव इन शिमला के बाद कुछ अरसे तो हम लोग बिल्कुल अलग रहे।
2: अच्छा,
1: झगड़ा हो गया था।
2: ओहो,
1: और फिर जो मिले तो शादी के अटूट बंधन में बंध गए।
2: हाँ भाई, होना भी ऐसा ही चाहिए था। अच्छा कुछ नैयर साहब की पर्सनैलिटी के बारे में बताइए साधना जी, किस टाइप के आदमी हैं वो?
1: बड़े मस्त मनमौजी टाइप के आदमी हैं, बड़े ठाट बाट से रहते हैं। वो अच्छी से अच्छी जगह रह चुके हैं, कीमती से कीमती गाड़ी चला चुके हैं, मगर पैसे की उन्हें बिल्कुल कदर नहीं।
2: अच्छा,
1: हजारों हो या लाखों या कुछ भी ना हो, उनके लिए सब बराबर है। वैसे वो अपने आप पर कुछ खर्च नहीं करते, पैसे से ज्यादा उनकी नजर में इंसान की कीमत है।
0: आर के नैयर अब इस दुनिया में नहीं रहे और गीतमाला की छाव में का ये वॉल्यूम नंबर 15 रिकॉर्ड हो रहा है कब? सन 2010 में, जब साधना हैं तो, मगर कई वर्षों से नजर नहीं आई वो। आंखों की बीमारी ने उस लाजवाब अदाकारा को गुमनामी की छाव में डाल दिया, मगर मैं उनका दोस्त और उनका जबरदस्त फैन पहले उन्हें सलाम और हेलो कहता हूं। हेलो साधना, और फिर बहनों भाइयों मैं गीत वाला की छाव में यूं बढ़ता हूं आगे। एक ऐसा बड़ा प्यारा गीत आया था उस साल जिसमें मोहम्मद रफी के साथ साथ गीता दत्त ने गाया तो था ही, मगर उन्होंने कुछ लव्स बोले भी थे, याद है आपको वो गाना?
3: चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुम झुम रुम झुम।

0: कुछ।
1: तो बहनों और भाइयों, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा उस रास्ते पर जिस पर मेरी कहानियां सजी हुई होती हैं, यानी समय का रास्ता नंबर 5। ये तो आप जानते ही हैं बहनों और भाइयों कि बच्चा जब पैदा होता है ना, तो खुशी की कितनी लहरें दौड़ पड़ती हैं पूरे परिवार में। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं भी खुशी से फूला नहीं समाया, मगर मुझे सिर्फ सुबह और फिर बड़ी देर में रात को अपने बेटे राजिल को देखने का मौका मिलता था, क्योंकि भाई दिन भर मैं दफ्तर में रेडियो सिलोन के प्रोग्रामों में लगा रहता था, न सिर्फ गीतमाला बल्कि कई और प्रोग्राम और फिल्मों की रेडियो पब्लिसिटी भी। और जब रात को मैं घर लौटता ना, तो मेरा बेटा अगर कभी जाग भी जाता तब भी मैं उसे अपनी बाहों में उठाता नहीं था, क्योंकि बहुत डरता था मैं कि अरे इतना छोटा सा बच्चा है, मैंने उसे ठीक से नहीं उठाया, ठीक से नहीं पकड़ा, तो कहीं उसकी गर्दन या उसकी कमर न लचक जाए। ओ, उसे तो सिर्फ रमा उठाती थी या मेरी अम्मा या फिर आया। मगर जब रमा उसे फिर से प्यार से सुला देती थी तो मैं पास बैठकर माँ बेटे को मुस्कुराकर ताकता रहता था, और मुझे यूं लगता था जैसे हवाओं में उस साल का ये खूबसूरत सा खामोश सा गीत हल्के से गूंज रहा हो।

अच्छा भाई, आप तो जानते ही हैं कि 1960 के साल को मैंने गीतमाला की छाओं के लिए 3 वॉल्यूम्स में इसलिए ढाला था क्योंकि उस वर्ष बाप रे इतने ज्यादा लाजवाब गीत थे कि अगर उनका ठीक से जिक्र ना होता तो भाई बड़ी नाइंसाफी होती। अब देखिए ना, एक फिल्म उस साल आई थी जिसका नाम था परख, जिसका सिर्फ एक गीत सालाना संगीत सीढ़ी तक पहुंच पाया, मगर जो 3 और जबरदस्त गीत उस फिल्म में थे उनमें से एक बजा वॉल्यूम 13 में और 2 गीत अब बजेंगे, एक जरा कम और दूसरा काफी ज्यादा।

एक और जबरदस्त म्यूजिकल फिल्म थी 1960 में, जिसके दो छांव वाले गीत मैं यहाँ बजाना चाहता था बहनों भाइयों, लेकिन उनमें से एक तो ऐसा धमाकेदार गीत है कि आज भी हर रेडियो स्टेशन पर साल में कई कई बार बजता है, खासकर बरसातें शुरू होते ही। जी हाँ, फिल्म बरसात की रात का गीत, गरजत बरसत सावन आयो रे। तो भाई वो तो बसा ही है आपके दिल में, और अब तो एक लाइन मैंने भी गा दी, इसलिए मैं वो गीत नहीं बजाऊंगा, उस फिल्म का एक और बड़ा मधुर मगर दर्द के सुरों में डूबा हुआ गीत बजाऊंगा जो आप शायद भूल गए होंगे। सुनिए दिल थाम कर।

लेकिन बहन और भाइयों, मैंने जो आज वादा किया है आपको समय के अलग अलग रास्तों के बारे में बताने का, उस वादे को देखिए मैं आज बड़ी ईमानदारी से निभा रहा हूँ। और आज समय का छठा रास्ता है, यही बहुरंगी बहुरूपी शब्द यानी आज। देखिए ना, आपके लिए तो आज यही दिन है जब आप ये वॉल्यूम सुन रहे हैं, मगर भाई मेरे लिए आज वो दिन है जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी इस वॉल्यूम की रिकॉर्डिंग हुई है, हो रही है बल्कि 5 जनवरी सन 2010 को। और मेरे इस आज से कोई 21 रोज पहले 15 दिसंबर सन 2009 को, जब सुबह मैंने भारत के एक बहुत ही बड़े न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज खोला तो देखकर दंग रह गया साहब। दंग इसलिए रह गया बहनों भाइयों कि उसमें इतने वर्षों के बाद श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी पुराने रेडियो सिलोन का जिक्र था। जी हाँ, और उसमें ये लिखा था कि किस तरह आज भी कोई खास स्पॉन्सरशिप या एडवर्टाइजमेंट्स के बिना भी कैसे कुछ घंटों के लिए ही सही मगर बड़ी बाकायदगी से चल रहा है ये रेडियो स्टेशन, जो कई वर्षों तक सारे एशिया में और अफ्रीका तक में भी धूम मचाता रहा था। और जो दो लड़कियां उसे आज भी बड़ी हिम्मत से चलाए जा रही हैं, वो हैं पद्मिनी परेरा और ज्योति परमार। बनो भाई, उस अखबार के एडिटोरियल में और भी कई लोगों के नाम थे जिन सब की खबर मैं आपको किसी अगले वॉल्यूम में दूंगा, मगर उस लेख में खास तौर पर यह भी लिखा था कि रेडियो सिलोन का जो रेडियो प्रोग्राम लोकप्रियता की एकदम चोटी तक पहुंचा वो आपका यही प्रोग्राम था, यानी गीतमाला। तो भाई, आपकी गीतमाला तो करोड़ों संगीत प्रेमियों का प्यार पाती रही करीब 45 वर्षों तक, मगर खुद गीतमाला ने भी तो अपने सभी प्रेमियों को यानी आप सबको अपना दिल देकर आपको अपने नैनों में बसाया था। ये देखिए, उसका सबूत दे रहा है 1960 की छाओं ही का एक बड़ा प्यारा गीत जिसकी भाषा हिंदी नहीं थी बल्कि थी हिंदी से मिलती जुलती रंग रंगीली राजस्थानी।

बहनों और भाइयों, आजकल के जो नौजवान फिल्म फैंस हैं ना, उन्हें तो 50s और 60s की ज्यादातर फिल्मों में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, जिसकी वजह एक ये भी है कि वो फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थीं। मगर साहब, उनके गीतों में वो मिठास, वो रोमांस, वो लगन और वो रंगीनी भी हुआ करती थी कि आज की हसीनाएं भी उन्हें सुनकर कहती हैं हाय, और आज के डैशिंग यंग मैन भी कहते हैं आई से हाउ क्यूट। तो भाई, 1960 का एक ऐसा ही क्यूट क्यूट गाना अब आ रहा है आपके सामने, हैं, आपसे नैन लड़ाने और आपको बाहों में भर दे।

अच्छा खैर, अब जरा प्यार से चलिए बहनों भाइयों, गीतमाला के समय के उस रास्ते पर जिस पर आया करते हैं गीतमाला की छाओ में सुनने वालों के खत। समय का ये रास्ता नंबर 7 वैसे हमारे इन वॉल्यूम में जरा कम आता है क्योंकि आजकल तो खत ढेर सारे आने लग गए हैं बहनों भाइयों, और टाइम हमारे पास होता है बहुत कम। मगर एक बड़ा अनोखा खत डोंबिवली के रविंद्र त्रिंबक सिन्नरकर ने ऐसा भेजा है कि मुझे इसे शामिल करना ही पड़ेगा साहब। ये लिखते हैं, अमीन भाई, मैं अपनी कार चलाते हुए एक रोज ठाणे जा रहा था, कार के सीडी प्लेयर डेक पर आपकी गीतमाला की छाओ में की एक सीडी लगी हुई थी। मैं सुनकर मजे ले रहा था और पुरानी यादों में खो रहा था कि अचानक ध्यान चूका और एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो प्लीज अमीन भाई, आप अनाउंस कीजिएगा कि गाड़ी चलाते हुए सीडी प्लेयर पर अच्छे अच्छे सीडीज कोई भी कभी भी ना सुने। अरे अरे अरे, रविंद्र सिन्नरकर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? अजी, पिछले 20-30 वर्षों से न जाने कितने करोड़ों लोग हर रोज गाड़ी चलाते हुए अच्छे अच्छे सीडीज या फिर एफएम रेडियो के मजेदार प्रोग्राम सुना करते हैं, और इस वजह से तो आज तक किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो भाई बेहतर है कि आप जरा अपनी ड्राइविंग करते हुए बाबूजी धीरे चलना और आइंदा कार में गीतमाला की छाओ में का सीडी लगाने से पहले परमात्मा को याद करके उससे दुआ मांगना कि वो आपके होश हमेशा हमेशा बिल्कुल ठिकाने पर रखे। चलिए एक मधुर भजन 1960 का अभी सुन लीजिए।

0: अत्यावश्यक चांदी का सामान विक्रेता सिल्वर स्टेट संपर्क
1: सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमांडू शाखा शुक्रपथ विशाल बजार को अगाड़ी र जावलाखेल फोन 42 23 745 र 42 33 556
2: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नु हुने छ।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में। और बहनों और भाइयों, आप भी चाहे किसी भी धर्म किसी भी मजहब के हों, इस तेज रफ्तार जेट स्पीड के गड़बड़िए जमाने में अपने भगवान अल्लाह गॉड से नाता कभी मत तोड़िएगा। हाँ, वरना आपका भी वही हाल होगा जैसे 1960 की छाव में इनका हुआ था।

6 बजे। अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: गोल्ड प्यालेस, शुक्लपथ न्यू रोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिङ,
2: चिर परिचित यहाँ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ पनि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: करोति।
1: इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योर्चां स्थापयति शतलक्षं प्रजप्त्वापि सोर्चा सिद्धिन्न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विधिस्मृतः।